0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: न मैं अजमी न हिंदी न इराकी ओ हिजाजी के खुदी से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाजी तू मेरी नजर में काफिर मैं तेरी नजर में काफिर तेरा

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: जी, ईरानी कैदर से मुलाकात करी ईद उल उजा इस्लामाबाद में गार्डन के बेदौर दौरान जंगबंदी माहदे ते सही उठने जो इम्कान है। पाकिस्तानी अहम शख्सियत आज दुबारे दौरे दौरान ईरान ए अमरीका विच में हतमी माहदे के मसूदे जो पिण ऐलान थी सके तो।

अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान जो जवाब जो कुझ ॾींहं ताईं इंतज़ार कंदासीं। ईरान वटि घटि वक़्तु घटि आहे, जेसिताईं को माइदो नथो थिए ईरान खे को बि रिलीफ़ न ॾींदासीं। नई ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त हूंदी। असांखे ईरान खां सही जवाब हासिल करणो आहे, हुन लाइ कुझु ॾींहनि जो इंतज़ार करे सघूं था। हाणे जन ईराननि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं ईरानी क़ैद सां मुलाक़ातूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ईरानी सदर मसूद पख़्शान, बासराना इनकलाब जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात कई। मोहसिन नक़वी कुझु ॾींहं पहिरियां बि ईरान वियो हो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अण सिधियूं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ख़तम नाहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि करण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाइकाई चयो आहे त पाकिस्तान जे टाकरे सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लागू पाबंदियूं फौरी तौर ते ख़तम कयूं वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेको चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न, पर असांजो हक़ आहे।

हिंदुनि जो रुहानी पेशवा साईं साधराम जो आखिरी रस्मूं रड़की दरबार में अदा कयूं पयूं वञनि। कुझु देर में संस अग्नि संस्कार कयो वेंदो। साईं जे अक़ीदतमंदनि जो ॾेह तोड़े परडे॒ मां मुंद सिलसिलो जारी आहे।

घोसपुर ऐं प्रियालो में चोरनि डिणबार ॾिनो। घोसपुर में चोरनि हिंदू वापारी जे घर मां चोरी दौरान वापारी बसंत लाल खे शदीद ज़ख़्मी करे 20 लख रुपया फुर कया विया। प्रियालो में होटल तां लखनि रुपयनि जो सामान चोरी। मुतासिर जो सखर पीर जो गोड़ ते धरणो। ट्रैफिक बहतल।

0: ऐं पिथुर में नारी ऐं नौजवान मोबाइल तौर ते गॾिजी आपघात करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त जमील मरी गोट में पढ़ियल नारी जीअं गुली ऐं नौजवान भूरो कुली वण में फाओ खाई आपघात कयो। दादू जो घोट सूमर खान कमराणी में बि नौजवान मोबाइल तौर ते आपघात करे छॾियो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साल कयुम कमराणी फाओ खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजा

0: में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश अखे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप. वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉम.
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ. मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों. ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: की कहानी है मुख्तसर, फिर यूं कि तेरे बाद हम तुम्हारे नहीं रहे,
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। 13 से 19 अप्रैल 2024 में जो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से के इन लम्हात से फायदा उठाए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
7: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GFM की आवाज।
6: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
8: It's 11 AM. This time check is brought to you by
9: Cadet College.

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: कैडेट कॉलेज जगबाबाद। अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
3: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा। राब्ता 0333-733-1172।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: अमेरिका ईरान विच में जंग के खात्मे लाए पाकिस्तान एक भेरों बीहर कोशिशों तेज कर छड़ियों। अरब मीडिया मौजूद मसूदे की हतमी शक्ल डण के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज तेहरान पहुंची ईरानी कैद से मुलाकात कंदी। ईद उल अज़हाबाद इस्लामाबाद में गाड़ियों के बे दौर दौरान जंग बंदी मुआहदे से सहयू थियण जो इम्कान है। पाकिस्तानी अहम शख्सियत जी अज वाले दौरे बाद ईरान अमेरिका विच में हतमी मुआहदे के मसूदे जो ऐलान थी सके तो

अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान जे जवाब जो कुझु ॾींहनि ताईं इंतज़ार कंदासीं। ईरान वटि वक़्तु घटि आहे, जेसिताईं को मुआदो नथो थिए ईरान खे को बि रिलीफ़ न ॾींदासीं। नई ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त हूंदी, असांखे ईरान खे सही जवाब हासिल करणो आहे। हुन लाइ कुझु ॾींहं इंतज़ार करे सघूं था। हाणे जिन ईराननि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो ईरानी क़यादत सां अहम मुलाक़ातूं। वफ़ाक घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, पासवान इनकलाब जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी ऐं ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात। मोहसिन नक़वी कुझु ॾींहं पहिरियां बि ईरान वियो हो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अण सिधियूं ॻाल्हियूं जो सिलसिलो ख़तम न आहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि करण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परेही तर्जुमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त पाकिस्तान जे टाकरे सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लागू पाबंदियूं फौरी तौर ते ख़तम कयूं वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेके चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न पर असांजा हक़ आहिनि।

सलामती काउंसिल के ट्रंप के धमकियों सामू खामोश न वेहन घुर्जे। गयल कौमन में ईरानी सफीर जो मुतालबो। अमीर सईद ईरानी चो तो ट्रंप ईरान से हमला, ईरान के पत्थर के दौर में धिकण जो सरेआम धमकियों पो डे। ट्रंप ईरान के एटमी साइंसदान तवनाई इक्तसादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही समेत ईरानी तहजीब तबाह करने की धमकियों भी दे चुको है। सलामती काउंसिल की ही खामोशी खतरनाक अमल के जन्म दई सके थी। आलमी सतह के तेल जगह में घटताई बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। हैंडेड इंडेक्स में 26,000 पॉइंट्स में वाद। आलमी मंडी में तेल जो फी बैरल अघ $100 का भी घटी पो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हैंडेड इंडेक्स 1,67,731 पॉइंट की सतह पहुंच पो।

अदाकारा मोमिन इकबाल पारां पंजाब जे एमपीए ते हिसण जो इल्ज़ाम। एनसीसीआई एमपीए के तलब करे वरतो। अदाकारा मोमिन इकबाल चयो आहे जेको बासल सियासी शख्सियत घणे अरसे खां हिसाए रहियो आहे ऐं मुसलसल धमकियूं ॾेई रहियो आहे। बासल शख़्स ख़िलाफ़ एनसीसीआई एफआईए ऐं पंजाब पुलिस खे शिकायत कई पर सियासी शख़्स बासल हुअण सबबि कार्रवाई न थी। हिंदुनि जे रुहानी पेशवा साईं सादराम जो आख़िरी रस्मूं रेड़की दरबार में अदा कयूं पयूं वञनि। कुझु देर में संदसि अग्नि संस्कार कयो वेंदो। साईं जे ज़ारीन जी अक़ीदत मंदर ॾींहुं अॾे तोड़े परॾे मां आम जो घोसपुर ऐं परियालू में चोरनि ॾिण बारे ॾिनो। घोसपुर में चोरनि हिंदू वापारी

0: तजुर्बे से बोल रहा हूँ, इसी फील्ड में हूँ।
1: ऐं पिथोरो में नारी ऐं नौजवान मुबैना तौर ते गॾिजी आपघात करे छॾियो। पुलिस चवण आहे त जमील मरी ॻोठ में पढ़ियल नारी जियां कोली ऐं नौजवान भुरो कोली वण में फाउ खाई आपघात कयो। दादू जे ॻोठु सूमर खान कमराणी में बि नौजवान मुबैना तौर ते आपघात कयो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साल कयूम कमराणी फाउ खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
6: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
8: GFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज़ भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 11:30. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Mera naam Dr. Aftab Ahmed hai aur main batore Assistant Professor National Institute of Child Health Karachi mein apne farayan sar anjam de raha hu. पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे।
2: NICH कराची में पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर
3: बच्चे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ जी FM 88 नेटवर्क ते।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: It's 12 PM. This transact is brought to you by
3: Bankal Habib. रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी थियण वारो सिलसिलो मुकमल। शुरूआती 1 करोड़ 20 लख जे त मजमू सड़पकारी या 1 अरब डॉलर ताईं थियण जो इम्कान आहे। इंडस ऐं मकरान ऑफ शोर पेंसिल में ब्लॉक अलॉट कया विया आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक पारां मुआहिदो, तवनाई पॉलिसी जी तारीख़ी कामयाबी करारु।

गोसपुर प्रयालो में चोरन ऋण बारे ॾिनो। गोसपुर में चोरन हिंदू वापारी जे घर मां चोरी दौरान वापारी बसंत लाल खे शदीद जख़्मी करे 20 लख फुर करे फरार थी विया। प्रयालो में होटल तां लखे रुपयनि जो सामान चोरी, मुतासिरनि जो सकर पीर जो गोठ धरणो, चोरी वापसि करण जो मुतालबो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
5: Bismillahirrahmanirrahim. मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन आब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह. हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएं.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: की फोर्सेस जो ऑपरेशन चार खारजी मां दहशतगर्द मारजी विया, मारजी वाले दहशतगर्दन में गुरबल, खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब शामिल। सिक्योरिटी जरन मौजब खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब जी सिर की कीमत 30 लख रुपया मुकरर हुई। मारजी वाल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज ऐं शहरन ते हमलन जो मास्टर माइंड हो। खारजी दहशतगर्दन उमर बोबाली मस्जिद पारां ज़मीन ते बैंकर ठहिण सां गॾु बारूदी सुरंगूं बि विछायूं हुयूं। पाकिस्तान पारां इसराइली जहाज जो शिकार बणियल गज़ा वासियुनि लाइ खाद खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जे बदसलूकी वारे वाक़िए जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। तर्जुमान चयो आहे त गुलिबल समूद कटलुला खे रोकण ऐं काकुरन सां बदसलूकी आलमी कानूननि ख़िलाफ़ आहे। काफ़िले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद इदी समेत समूरनि इंसानी हक़नि जे काकुरन खे आज़ाद करण जो मुतालबो। स्पेन ऐं इटली पारां बि इसराइली क़दम जी मज़म्मत। स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो आहे त फिलोटोला जे काकुननि जी इहा ॻाल्हि क़बूलण जोगी नाहे। पंजनि शहरनि सां बदसलूकी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। इटलीअ में इसराइली सफ़ीर जे तलबी वाक़िए जी वज़ाहत तलब कई वई आहे।

ईरान जंग जे अफ्रीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी पार्टी वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त अमरीकी तजवीज़ुनि जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघिजे, जंग जे ख़ात्मे लाइ हिक ॿिए जो एतराम ज़रूरी आहे।

सिन काबीना कराची के पीआरटी मनसूबे लाट जो कम तेज करण की मंजूरी डी छी कम में देर से अगूणो ठीको रद्द एफ डब्ल्यू के कम डेण की मंजूरी डी वही वे वजीर यूनिवर्सिटी रोड जो कम नवे दिन अंदर मुकम्मल करण की हिदायत नाकस कारगर्दगी या नाअहली से उहदे तां हटाने जो तरीकेकार भी मंजूर सिन काबीना पारा वफाक का मुंतकिल थियल तिबी इदारन के इंतजाम लाए नो कानूनी फ्रेमवर्क मंजूर किया वो।

0: सिंध हाईकोर्ट कराची SPSC जा नतीजा मुअतल थियण वारो फैसलो 9 जून ताईं बरकरार रखी छॾियो। अदालत जो दरख़्वास्त गुज़ारनि उमेदवारनि ऐं कामयाब करार ॾिनल 71 उमेदवारनि खे केस में धुर बणाइण जो हुकम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर पेशती अदालत खे रिकॉर्ड सील करण बाबति आगाही ॾिनी। अदालत गुज़िरियल ॿुधणी ते SPSC जे साल 2024 जे रिकॉर्ड खे सील करण जो हुकम ॾिनो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल शहद कराची में अंजाम दे रहा हूँ। सैंपल्स में पॉजिटिव है, हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
5: GAFM 91.6।

ओके जनाब, से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है जनाब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से, जिसमें आप लोगों के लिए शामिल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे, उससे पहले जरा आज आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है, कभी बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम कभी शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वैसे ही आज जरा एक और बात हमारी जिंदगी में जो कि हम शायद डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं लेकिन हमने कभी उस बात के ऊपर शायद ध्यान ना दिया होगा। तो आज आप मुझे ये बताइए जरा, क्या आप ये चीज समझते हैं या फिर शायद आप जानते होंगे कि डेली यानी कि रोजाना अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि आप अपना चेहरा रोजाना आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? ये आज आप मुझे बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो बताइए, अगर आप नहीं जानते तो जरा फर्ज करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अपना रोज जो है ना वो चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते होंगे। ऐसे हमें पता चलेगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कितना रखते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखने वाले हैं या नहीं। समझ रहे हैं। ओके जी, तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, वो कल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस, देखिए अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा ऑफिशियल पेज है जनाब, जिसके ऊपर आप आकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हमारी लाइव पोस्ट आप लोगों को मिलनी, लाइव पोस्ट के ऊपर

0: जैसे आपके चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करेंगे, आपके चेहरे के एक्नी का कंट्रोल करेंगे, आप लोगों की खूबसूरती में मजीद इजाफा लाते जाएंगे। क्योंकि जब एक्नी आपके चेहरे पर आ जाते तो यकीन जाने मजा ही नहीं आता, जिंदगी ऐसी अजीब अजीब सी लग रही होती है। तो अगर आप भी टीनेजर से अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी आना स्टार्ट हुए या फिर आप एक्नी से सफर करें काफी ज्यादा, तो भाई आपको चाहिए कि आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी जो ट्यूब है ना वो जरूर ट्राई करके देखिए। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपको मजे आ जाएंगे। और साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए। जरा मुझे बताइए कि आप अंदाजा लगाइए या फिर क्या पता आप जानते ही होंगे डेली बेसिस पर यानी कि रोजमर्रा आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं, यानी कि कितनी मर्तबा आप अपना चेहरा आईने में रहे होते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर मुझे ब्रेक ली जाए, ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास साथ एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक सुनते रहिए प्रोग्राम एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Mera naam Dr. Sadullah Chachad hai. Main consultant pediatrician hoon NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा मेहरा जो सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

बादल कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, काश आप बचपन में टीचर होती तो डेली स्कूल आते, हम भी कभी कोई बहाना नहीं करते स्कूल ना जाने के लिए। अच्छा अच्छा, स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय हाजिर, स्मार्ट हाजिर है, क्या बात है, स्मार्टू भाई आपको वेलकम करते हैं। और स्मार्ट किशोर कहते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को गले लगाकर आई लव यू कह दें तो हो सकता है वो भी छोड़कर चली जाए। बात में दम था वैसे। हजार खान जो तो भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलाम कहते हैं, छाला लाजवाब वाइट एश ब्यूटी शो ये न लवली दा जलवा दवा बाबा। अच्छा एसन अरबानी वालेकुम असलाम, छाला खुश आयो। हजार खान कहते हैं सुबह शाम देखते हैं चेहरा हम, सुबह एंड शाम को डॉक्टर लिखी दिन होता है। एक दफा सुबह जो दिसो एक दिसो।

कहते कि टॉपिक मैं सुबह ऑफिस जाते वक्त देखता हूँ, फिर वापस आकर देखता हूँ। अगर छुट्टी हो तो दिन में 6-7 बार हो, यानी तो वाइडा सुना आयो तो पान की घड़ी घड़ी दिखता है। सुठी गाला। दर्दी दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम प्यारी, कैसी हैं? और उदास लड़की कहती है, टॉपिक मैं तो ज्यादा देखती हूँ, फेस वॉश भी ज्यादा, स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इतना ज्यादा भी मत किया करो कि भाई आपके चेहरे पर जो ऑयल है नेचुरल ऑयल वो ही खत्म हो जाए। जब आपके चेहरे पर जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो खत्म हो जाता है, तब आपके चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो फेस वॉश है ना वो 2-3 मरतबा किया करिए, इनफ होता है। लवली जो जलवा है बाबा, बिल्कुल वाइट एज लवली जो जलवो आ जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांखे पाण खे ख़बर पइजी वेंदी आहे। त वाइट एज लवली क्रीम आहे, रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार थियल, जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन शामिल अथव। 30 वाइटमिन समझो था, हुन सां गॾो गॾु सनस्क्रीन बि शामिल अथसि। उहा इन जे लाइ जीअं सूरती सां गॾु गॾु हिफ़ाज़त बि मिले तव्हांजी स्किन खे। अगरि तव्हां सुबुह जे टाइम ते, ईअं थींदो आहे न त असां सुबुह जे टाइम ते काॾे कमु करण वेंदा आहियूं, या फिर तव्हां अगरि डेली बेसिस ते कोई जॉब कयो था, त तव्हांखे जेको आहे न पंहिंजी स्किन खे फ्रेश ॾेखारणो हूंदो आहे, तव्हांखे पंहिंजी स्किन ते न मेकअप लुक ॾेखारणो हूंदो आहे। पर तव्हां घणो मेकअप नथा करे सघो छो त बाबा गर्मियूं अची वयूं आहिनि। त उन जे लाइ छा कंदा, तव्हां बसि वाइट एज जी लवली क्रीम थोरे मक़दार में पंहिंजे चेहरे ते लॻाए छॾींदा, ऐं पोइ ॾिसंदा त लवली जा जलवा आहे, हाय तव्हांजी स्किन इहे सफ़ा चिमकंदी वेंदी, छो त हिन में ग्लिटर बि मौजूदु आहे जेको तव्हांजी स्किन खे एसी शिमरी शिमरी लुक ॾींदो आहे। ऐं एॾी ज़बरदस्त हिन जी क्वालिटी आहे, मां छा ॿुधायां, पर्सनली यूज़ कंदी आहियां मां। ऐं मां त मतिलबु इहो चाहियां थी त मां सभिनी खे हिन जो जेको आहे न मशवरो ॾियां था, बाबा तव्हां लाज़मी लॻायो, डेली बेसिस जे लाइ तमामु परफेक्ट प्रोडक्ट आहे। तो वाइट एज जो लवली जेका ट्यूब आहे न, ही तव्हां लाज़मी पाण वटि वठो। लाइट वेटेड फार्मूलो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त फार्मूलो आहे, हुन सां गॾोगॾु सनस्क्रीन बि एड थियल अथसि, त बाबा ख़ूबसूरती मिलंदी ऐं ख़ूबसूरती ते हिफ़ाज़त बि थींदी। सो वठी अचो, वञो हाणे।

अच्छा किशोर भाई ईअं कयो ना त हिकिड़ो हिकिड़ो ड्रॉप विधो न त सभिनी जी शक्ति मिली वञे समझो था मुझे बता दें एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बिल्कुल वैसे एक ड्रॉप की कीमत तुम क्या जानो। दर्दे दिल कहती है कि अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान बहुत लेता है मगर कभी साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को सब कुछ दे देता है मगर साथ नहीं देता। बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी। और चाचा खालिद जुड़ी जो मेरे साथ मौजूद दीदी टॉपिक को फॉलो किया है कहाँ फॉलो किया है यहाँ तो आपका सिर्फ मुझे यही स्टार्टिंग वाला मैसेज मिला है और बाकी शायद आपने पैनल पर मैसेज किए होंगे। ओके जी देखते हैं पैनल के जाने भी आते हैं। इकबाल लाशारी मेरे साथ मौजूद हैं कहाँ से सुन रहे हैं मीरपुरखास से सुन रहे हैं वेलकम करते हैं भाई जान को। और उसके अलावा आदिल कहते हैं कि टॉपिक आंसर में जब घर से निकलता हूँ तब चेहरा देखता हूँ बस न निकलो तब बस ये भी सही है।

अच्छा ही गानों ने मानों के डेडिकेट जाके व्हाइट ऐसा प्रोडक्ट लगाएं पया सोना ती जाए अल्लाह सद देखो ओके जी अली अकबर ब्रो ही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेंट से आपको वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ वेरी नाइस इधर शो मेरे दोस्त की शादी है और सॉन्ग प्ले कीजिएगा शादी वाला ओके ओके ओके इमरान खान रुख हमारे साथ मौजूद है नाइस प्रोग्राम थैंक यू इमरान भाई मोहम्मद उर्स लगारी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम असलम टंडो अलह यार से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम

0: हाँ जी, क्या बात करें, इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए। इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप लगा सकती हैं। सर्दियां हो या गर्मियां हो, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं ये सारे मौसमों के लिए है। तो अभी सर्दियां नहीं बल्कि गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में भी लगाइए। जब सर्दियां आएगी तब आप सर्दियों में भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है? कोई मसले की बात ही नहीं है। गोट मोहम्मद तैयब थेबू खां भी बुला थेबू कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आहे। मुख्य गानो बुधरा है जो तेरा मेरा है प्यार अमर, बिल्कुल यो गाना जैसा जरूर बुधंदासी। अमां ॿुधायां थी त मां पंहिंजो मुंहुं मुबारक जेको आहे केतिरा दफ़ा जेको आहे न ॾींहं में ॾिसंदी। वकास कहते फ्रॉम विलेज अली। अच्छा शेदार कोर से, सही है। बाजी मैंने मेरे फ्रेंड को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है। वाह साई वाह, ले तमाम दोस्त जी। अफा देरी सऊ देरी फ्रॉम नवाब शाह, सलामती शो बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया भाई जान को वेलकम करते हैं। और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला, नहीं बल्कि शुएब महर है बाजी। कुछ लोगों का चेहरा साफ और दिल साफ नहीं होता। अब्दुल्ला महर को सलाम दीजिए। इशारा होगा कहाँ गया वैसे। चले यहाँ ऐसा वाक्य होता है, कुछ लोग सिर्फ चेहरे को साफ करने में लगे होते हैं, उनके दिल मेले हो चुके होते हैं। ऐसा भी मत किया करें, चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें, शफाफ रखें, और साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल करती रहें और अपनी नियत का भी ख्याल करती रहें। और टाइम हो जाता है जरा, हम जो है ना वो न्यूज ब्रेक की जाने में जाते हैं मेरी जान, और उसके बाद जो है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते। तो आपने कहीं नहीं जाना, आप सुन रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: इट्स 2 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
4: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
1: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

वठी जवाब न वेंदो। इरानी सदर मसूद पशियान चयो आहे ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघजे जंग जे ख़ात्मे लाइ। पाकिस्तान पारां इसराइली जारत जो शिकार बणियल गज़ा वासियुनि लाइ खाध खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जे बदसलूकी वारे वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। तजमान चयो आहे त ग्लोबल समूद फिल्टोला खे रोकण ऐं कारकुननि सां बदसलूकी आलमी कानून ख़िलाफ़ आहे। काफ़िले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद इदीअ समेत समूरनि इंसानी हक़नि जे कारकुननि खे आज़ाद करण जो मुतालबो। स्पेन ऐं इटली पारां बि स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो त फिल्टोला जे कारकुननि जे तज़दीक क़बूलण जोगी नाहे। पंहिंजनि शहरनि सां बदसलूकी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। इटली में इसराइली सफ़ीर जी तलबी वाके ते वज़ाहत तलब कई वई। सूबे लातू जो कम तेज करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कम में देर करण ते अॻूणो ठीको रद्द। थी रोड जो कम 90 ॾींहनि अंदरि मुकमल करण जी हिदायत। नाकस कारकर्दगी ऐं नाहली ते उहिदे तां हटाइण जो तरीक़ेकार बि मंज़ूर। सिंध काबीना पारां वफ़ाक़ खां मुंतकिल थियल तिबी इदारनि जे इंतज़ाम लाइ नओं कानूनी फ्रेमवर्क मंज़ूर कयो वियो। सिंध हाईकोर्ट कराचीअ जे SSP जा नतीजा मुअतल करण वारो फ़ैसिलो 9 जून ते बरकरार रखी छॾियो। अदालत जो दरख़्वास्त गुज़ार उमेदवारनि ऐं कामयाब कराइंदड़ 71 उमेदवारनि खे केस में धुर बणाइण जो हुकम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर पेशती अदालत खे रिकॉर्ड सील करण बाबति आगाही ॾिनी। अदालत गुज़िरियल ॿुधणी ते SPS जे साल 2024 जी रिकॉर्ड खे सील करण जो हुकम ॾिनो हो।

0: उत्तर वजीरिस्तान के इलाके स्पनबाम में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन चार खारजी दहशतगर्द मारजी पाया मारजी पल दहशतगर्द में गुर्बल खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब शामिल सिक्योरिटी जरियन मूजिब खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब के सर की कीमत 30 लख रुपया मुकर हुई। मारजी पल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सिस शहर के हमलों जो मास्टर माइंड हो। खारजी दहशतगर्द उमर बोपाली मस्जिद पारा जमीन अंदर बैंकर ठाण से गड बारूदी सुरंगों भी बिछाई हुई। सदर वजीर आजम वफाकी घरू वजीर बिन जुपाक चीन सफारती लागापन के 75 साल मुकम्मल थे चीनी हुकूमत आवाम के मुबारकों। सदर आसिफ जरदारी चो पाक चीन लागापा गडल एतमाद स्ट्रेटेजिक सहकार मजबूत दोस्ती जो रोशन मिसाल आन। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो पाकिस्तानी अवाम चीनी अवाम से हकीकी दिली मोहब्बत कन्द है। मोहसिन नकवी चवा पाक चीन दोस्ती मिसाली एतमाद मोहब्बत से बदल सहकार की मजबूत आकास है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन आब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। 13 से 19 अप्रैल 2024 में जो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

0: रोगन। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, खूबसूरतियों को बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाते जा रहे हैं। तो भाई जान, मुझे नहीं लगता कि आजकल के दौर में कोई ऐसा इंसान भी होगा जो चाहता होगा कि भाई मैं खूबसूरत ना रहूं। हर किसी का खूबसूरत रहना ख्वाब होता है, सपना होता है और वो बहुत ज्यादा अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये जो पता नहीं आप क्या क्या कर रहे होते ना, इसमें एक तो ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, दूसरा ये कि आप लोगों का पैसा भी बहुत ज्यादा जाता है। तो अगर आपके पास कोई सूटेबल सा प्रोडक्ट मौजूद हो जो कि लाइट वेटेड हो, जिसके लगाने के बाद आपकी खूबसूरती में वो ये भी ना हो कि भाई जान कल जाकर हमारी खूबसूरती कहीं खराब ना हो जाए, हमारी स्किन खूबसूरती कहीं गायब ना हो जाए, जो मिल रहा है वो कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा जब आपके पास मौजूद होगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अब मार्केट में आ चुकी है तो बिल्कुल छा चुकी है। ओके जी, मैं सर आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो दिनों में वाजे आपको जो इनको रिजल्ट देने वाला

तो भाई जान आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, और इसके अलावा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन नरम हो जाती है, हमवार हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है और आपकी स्किन पुरकशिश होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है। विटामिन ई बीड्स के साथ साथ माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ जनाब ये क्रीम तैयार की गई है। डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको दे रहा है बहुत ही शानदार से रिजल्ट। तो आप इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए, और अपने चेहरे पर ये जो डार्क सर्कल्स हैं, ये जो एक्नी मार्क्स हैं, ये जो आपकी स्किन डल हो चुकी है, इन सब चीजों को खत्म कीजिए, क्योंकि आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। तो डी स्किन ब्यूटी है जनाब डी स्किन का फेस वॉश, क्योंकि अकेली क्रीम तो हम आप लोगों के लिए लेकर नहीं आते, उसके साथ आप लोगों के लिए सोप या फेस वॉश तो लाजमी होता है, होना भी चाहिए देखा जाए तो। तो डी स्किन का जब आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं जब आप डी स्किन के फेस वॉश को तो आपके दिल से बस एक ही ख्याल आता है कि ये क्या चीज बना दी है, इतनी जबरदस्त है क्वालिटी दे शातस बाबा बाबा। उन खां अलावा जो है ना हाइलोरोनिक एसिड आहे सीरम आहे ना जे अंदर जो तवाजी स्किन जे अंदर वनी करे तवाजी स्किन जी खूबसूरती के मेंटेन कंदो आहे, खूबसूरती के वधाईंदो आहे, आई तवा के हमेशा खूबसूरत बनाए रखंदो आहे। तो डी स्किन जो फेस वॉश जो तवा इस्तेमाल कंदा ताजी हर स्किन टोन जे लाय उन खां वडी गाली आहे तो तवा डी में 2-3 दफा लगायो सुबह जो मंजन जो राजो लगाए करे आई पाजी स्किन के क्लीन रखो आई पाजी स्किन के खूबसूरत बनायो। तो डी स्किन जा प्रोडक्ट तवा जे लाय मार्केट में अची वया अगर नथा मिलन तो तवा जे कोन पाजी करीबी जनरल स्टोर तवा नी मालूमात करायो नथा मिलन तो पोई तवा डायल कयो 03-15-799-0595 मुखे एकड़ी शिकायत भी मिली तव तवा नंबर ते रातो घट पया कयो हां छो ये छो कुटकी काई दो का नंबर ते रातो कयो बाबा नथे किथे मिलंदी होई बताओ जल्दी बुधायो उन खा अलावा खूबसूरत थी ना मनो छो तो खूबसूरती तवा जे लाय हाने आसान थी वया है छो तो मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलन शुरू थी वया है। उन खा अलावा जेको आ तमो जमा खा सवाल पुछो तो तवा पंजो चेहरो जेको आ वो रोजाना यानी कि डी में केतरा दफा डिसंदा आयो शीशे में असांजी आदत हुंदी आ त घड़ी घड़ी पांजो चेहरो आईने में डिसंदा आयो घड़ी घड़ी डिसंदा आयो डिसो त छा थी वयो आ या जिंजी स्किन ते एकनी हुंदा आ त वो बेचारो परेशान होता जिंजी स्किन ते एकनी ना आ त वो उन के भी परेशानी हुंदी आ अक्सर मु डठो आ मानन के त वो अलाई शो परेशान हुंदा आ न इंसान जे कोन हो के भी हाल में राजी ना आ हुंदो असो इंसान जी फितरत आ इंसान डाढो ना शुक्र आ सो तहा जे कोन अगर के भी वजह से परेशान आ एकनी आ तवा के या फिर तुम्हारे स्किन में डलनेस अची वया है ये सब नॉर्मल जेके नई मसला हुंदा इन जिंदगी जे अंदर उनन के तमा फेस करे सगो था उनन जे लाय तमा चले अलग अलग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार कया वया है जे मा तमा फायदो वठी सगो था इस्तेमाल कयो पांजी जिंदगी जो ये परेशानी त खत्म कयो बाकी परेशानी जो भी हल तमा वट मिली वेनो तमा के सो पांजी खूबसूरती के मेंटेन रखो पांजी जिंदगी में खुश रहो। बाबा असो प्रोग्राम बुधा रहो व्हाइटिश एंड द स्किन ब्यूटी शो अज भला तमाम में छो हाल कोने को छो या चुप करे बैठा हो तवा जो मैसेजेस किथे आए तवा जो कमेंट्स किथे आए।

मास्टर मजरूर का गाना भी लिस्ट में मौजूद है, आप जरूर सुनेंगे जी। और कहते हैं मेहरापुर से आप हमारे साथ ही। ओके जी, सारे मैसेजेस के लिए आपका बहुत वाला शुक्रिया। एक ही मैसेज को बहुत मतलब आपने शेयर कर दिया है, थैंक यू जी। फकीर राहिब, माशूक मेमण, मिठल मेमण, आसिम मेमण, देरिया सिटी कोट बहादुर, मौला इस्लाम मदद, भाऊ के चौथा भली करी आया। और इरम चादी से आप ही जवाब है, याद नहीं है जब मैं आईने में अपने आप को देखकर, जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप पर प्यार आता है। वाह वाह, ये अलग लेवल की बंदी है बाबा। अच्छा, प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमदाबाद से, वालेकुम अस्सलाम जी। कहते स्वीट शो कल वाला, हाँ जी बहुत शुक्रिया, कल वाला शो आपको पसंद आया, थैंक यू जी, थैंक यू। और ये हमारे साथ हैं, तेरे सामने मेरा हाल, तुम्हें क्या सुनाऊं ए दिलरुबा। वालेकुम अस्सलाम बाजी, क्या हाल है आपका, शो अच्छा चल रहा है। तमाम सुनने वालों को सलाम के बाद शायद आपका मैसेज जो है ना वो मिसिंग पार्ट हो चुका है। पैनल पर जब भी मैसेज करें तो उसकी टाइपिंग जो है ना वो उर्दू वाली टाइपिंग मत लिखा करें, क्योंकि ऐसे जो है ना थोड़ा मसला हो जाता है, जब मैसेज मिसिंग पार्ट आ जाता है लफ्ज इधर के उधर हो जाते हैं। और कश्यप हमारे साथ, यदि आप बस तुम सब बचाओ, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ।

बहुत सही बात फाइज वाली एकदम नो गाए थी उन के अलावा जिन जो शादी मानी गानों ने डेडिकेट किया है हा चाचा तवाजो ये मोहब्बतू आन बाबा चाचो डाडो भलो मानु तव सब बुधी छड़ो हिदायतुल्लाह चुप करे वेही रो अब्दुल रज़ाक ज़रदारी मेरे साथ मौजूद है और ये है जी कहजे हथ में हुजे या दीवार ते लगल हुजे या किथे भी आईने ते नजर पए चेहरो डिसी वठंदो आया सच्ची बुधाय मां भी कुछ ये कंदी आया

अच्छा मां पाण सोचां पई त हिननि सभिनी प्रोडक्ट्स मां जेको आहे न किशोर भाई कंहिं बि प्रोडक्ट मां इहो न चयो आहे त हाणे ही हीअं न हुजे आहे त मां लॻाए छो त हाणे हिन दफ़े न हिन चकर तव्हांजी हर फरमाइश ते मां सभु प्रोडक्ट खणी आई आहियां, यानी की इहो आहे न तव्हांखे मां इहो ऑप्शन या त हाणे तव्हांजे लाइ ही वारो प्रोडक्ट मूं वटि आहे कोन, सभु प्रोडक्ट आहिनि पर हाणे वरी तव्हांखे नाले में मसलो थी वियो आहे त ही नालो न ही नालो हुजे त पोइ असां हणंदासीं, इहा सरासर बदमाशी आहे बाबा। कुटकी जा हकदार तव्हां पक आहियो, इहो ईअं त कोन ॾिसो कंहिंखे कंहिंखे साड़ थो थिए। अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ माण्हू तव्हां खां सड़ंदव, अला वैसे ई सड़ंदा आहिनि पोइ कुझु ज्यादा सड़ंदा, सम्झो था। ओके सो हज़ार भाई कहते ओके मेरे काम का टाइम हो गया, चले भाई काम भी जरूरी है, वाकई काम कीजिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे इतना टाइम, और ये आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया है। टाइम भी खर्चाता है, जरा हम भी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने लगे हैं, तो आप बस यही मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, जो कि आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अभी बुधोप्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: सुन जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सुन जो आवाज बुदंदा रहो।
2: इट्स 2:30 PM। This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
4: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के लियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।
6: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
7: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
6: GAFM नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर अफसन प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ऐं भला पोइ ही वारो गानो हलायो, मां बि केॾो सिधरा चढ़ियो आहियां, तुंहिंजे शो में वरी वरियो आहियां। छो भला मना आहे छा तव्हांखे मुंहिंजे शो में अचण खां? तव्हांजो शो आहे, तव्हां न ईंदा त बाक़ी केरु ईंदो?

रहे हो कि वो डेडिकेट ये जरा राज की बात है, वो राज में रखी जाएगी. अच्छा ये सकलीन अब्बास हमारे साथ है. सकलीन अब्बास आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं. लोगों को कंफ्यूज इस तरह बिल्कुल इस तरह किया जाता है. अच्छा संजय जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो संजय भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. हाँ जी बिल्कुल. अब आपके कमेंट्स पर यानी कि हाने मुझे दिल जी को आने थोड़ी राजी थी यार, ये थोड़ा कमेंट करना है मजो ना आई तो वाला सदरा इलाही इलाही कॉमेंट की आदत विजी शरी था ना एनर्जी के. ये बिगाड़ो भी तो आए ना. अच्छा दर्दे दिल बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश जी नवाजिश. अच्छा ये हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी. आप कैसी हैं? मैं सफा भलिया हूं. और कहती हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड सब लड़कियों को. और कहती हैं कि टॉपिक बहुत मर्तबा देखती हूँ. बहुत मर्तबा से मुराद अच्छा चले ही जे को गानो न ही असा फजीला सिंधी जे तरफा उन जे हस्बैंड के डेडिकेट कयूं था. ठीक है.

अगर सच्ची बताऊं, मैं जब ब्रेक पर जाती हूँ ना, ब्रेक में होती हूँ, तो मैं खुद बोर हो रही होती हूँ. मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी ब्रेक में मेरा इतना सर्च हुए. मुझे तो 4-5 घंटे मिलने चाहिए बकबक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोलना चाहती हूँ. मैं बहुत बोलने वाला इंसान हूँ, तो थोड़ा लगता है, समझ रहे. और इसके साथ साथ जो है ना, ये बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया. और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए. और अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595. अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595.

अच्छा एस एन वे से तवां चओ सही था पर तवां के भी जको है ना जुमेवार डी मोकल हुंदो है ना मांजी मोकल तवां ने तवां जी भी मोकल सबनी जी मोकल ये जीवन क्या। अच्छा ये नोरिस एंटोनियो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है, एंजॉय करें एंजॉय करें। वासु भाई हमारे साथ मौजूद है। हेलो वासु भाई। ओके जी प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम।

अच्छा कहते हैं खाना ज्यादा खाते हैं ईद में, ये भी लोग अलग लेवल के बंदे वाकई भाई। गर्मियों में जब लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने खाते, तो मैं खुद ही सोचती हूँ वैसे माई चवंदी माण्हू चवंदा आहिनि ईद वारी ॾींहुं इलाही मानी खाईंदा आहिनि माण्हू, पर मां उहो वाहिद इंसान आहे जेको ईद वारी ॾींहुं शायदि मानी न खाईंदो आहे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वाला खाना देकर मेरा पेट भर जाता है। तो ये है हाँ, लेकिन ईद से पहले आप लोगों ने व्हाइट एश की लवली क्रीम लाजमी लेनी है, ताकि आप ईद पर जो है ना, अगर तैयार होना आपको बहुत मुश्किल लगे तो बस आप व्हाइट एश की लवली क्रीम थोड़ी सी मिकदार में लगा ली चेहरे पर, यूं आप रेडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह चिलके तो चिलके थी छा लगायो तो। अच्छा सुमाटो गोपांग कहते हैं कि सिद्धरा मुझे नहीं भी ऐसे इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले खुद देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻंदा कयो, पोइ ईअं ई तव्हां हमेशा बेवकूफ़ थींदा रहंदा ज़िंदगी में। उन खां अलावा जेको आहे सो जेको आहे तेको आहे तेको आहे जेको आहे हीउ वारो गानो त लाज़मी हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, अगरि हू ॿुधंदा त हीउ वारो त लाज़मी ॿुधंदासीं। सुभाणे सोचां पई त हाणे तव्हां खां इजाज़त बि वठूं, ठीकु आहे। चाचू चए थो तव्हां लंच कयो असांखे फॉर्चूनर घुर्जे रास की बात है वैसे असांखे भी

अच्छा दर्दी दिल कहती है कि टॉपिक चंदा, एक तो सुबह उठते ही देखती हूँ, फिर काम से फारिग होकर देखती हूँ, फिर तुम्हारा शो सुनते सुनते देखती हूँ, 20 से 25 बार तो कर ही इतनी मर्तबा भाई अल्लाह। वैसे वाकई गाना तो शायरी वाला है, लेकिन आज जरा शायरी वाला मूड नहीं था, तो बोल छुट्टी दे दे मेरे को, माफ कर दो। अच्छा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हमारी होने वाली है जी कल, नहीं बल्कि परसों वाले प्रोग्राम में। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो मुझसे नाचीज से तो माफ कर दी। व्हाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा, एरिया में मिल रही जरूर जो है ना वो लिया करें, ताकि आपको ये पता चले कि हम कहां से जाकर बसानी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल किया करें 03-15-799-0595, ठीक है। वैसे जाने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा आज, पता नहीं कि आप लोगों से बातें करने का दिल कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का लगा रहा है कि भाई जा अब तू। तो यस यस मैं जा रहा हूँ, सलामत अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: स्क्रीनो
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्लियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की खड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध जो आवाज GFM नेटवर्क क्या है सिंध जी दिल जी मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तलाणी थी वई आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जी तेहरान में ईरानी परदेही वजीर अब्बास राग़ची से मुलाकात। खिते की मौजूदा सूरत हाल समेत ट्रैकड़ी वन मामलों से गालू। ईरानी मीडिया मूजिब मोहसिन नकवी ए अब्बास राग़ची विच में जंग के खात्मे बाबत तजवीजों से भी गालू कई व्यू। मोहसिन नकवी जो हफ्ते अंदर ईरान जो ये बो दौरो है। ईरान के मुआदो थियण ताई को भी रिलीफ न डनो वो तेहरान के जवाब जो कुछ डी इंतजार कंदासी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमरीका से राबते में रहंदड़ ईरानी माकूल आन तेहरान डील ला बेताब है मुआदो न थो तो ईरान भी कर सकूं था। ईरान जंग की खात्मे लाए अमरीका जो नयो तजवीजू मिलने से तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजीर वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई है तो अमरीकी तजवीजों को जायजो वी जवाब डनो वो। ईरानी सदर मसूद पशिक्यान है तो डाट जरिए ईरान के झुकाए न तो सकज जंग की खात्मे लाए एक बे जो एहतराम जरूरी है। पाकिस्तान पारा इसराइली जारियत जो शिकार बनल गजा वासिन लाए खाद खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हकन के कारकुनन इसराइल की बदसलूकी वाले वाक़े की सख्त लफ्जन में मजम्मत। तर्जमान है ग्लोबल समून फिलोटेला के रोकण ए कारकुनन से बदसलूकी आलमी कानूनन खिलाफ है। काफिले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद ईदी समेत समूरन इंसानी हकन के कारकुनन के आजाद करण जो मुतालबो। स्पेन ए इटली पारा भी इसराइली कदम की मजम्मत। स्पेन के वजीर आजम तो फिलोटेला के कारकुनन की तस्हीक कबूल जोगी ना है। पांजन शहर से बदसलूकी कें भी सूरत में कबूल न कई वेंदी। इटली में इसराइली सफीर की तलबी वाके ते वजाहत तलब। सिंध काबीना कराची की बीआरटी मनसूबे लाट टू जो कम तेज करने की मंजूरी दे छी। कम में देर से अगूणो ठीको रद्द FWO के कम देने की मंजूरी डिनी वही। वर्डे वजीर की यूनिवर्सिटी रोड जो कम 90 दिन अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। जेल में कैदियों के खाधे पीते लाए वादू ग्रांट भी मंसूर। कणक के बे सूबे डां मुंतकली ते पाबंदी लागू। सीनियर वजीर शर्जील मेमन तो सूबे में कणक जखीरो करने खिलाफ कार्रवाई की वेंदी। 28 आइनी तरमीम से वफाक असा को भी राबो ना कर तरमीम जहा नुकता शेयर थन्दा पार्टी की मरकजी कमेटी फैसलो कंदी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी खिलाफ दाखिल शिकायतों रद्द कर छो। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खिलाफ दाखिल 5 शिकायतों को जायजो वरतो। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी खिलाफ शिकायतों इतफाक राय से रद्द कई वयूं।

0: अखो में पसंद पढ़ो कंदड़ नौजवान जब भायर कतल हथियार बंदन मुजमिल नदीम मयो के कतल कयो। पुलिस मौजे मकतूल नौजवान के भाव काशिफ अली मयो मुगेरी बिरादरी के औरत से लाहौर के कोर्ट में पसंद जो पढ़ो कयो हो जैता धुरन में छिकताण हलंदड़ हुई बिन जन के कतल बाद इलाके में खौफ पखड़ियल। सिंध अदर मुबिना अपघात वाले वाकन में रिकॉर्ड बाद थरपारकर सरे फहरिस्त चार औरतों समेत छह जणन मुबिना तौर अपघात कर जिंदगी जो अंत आंदो। इस्लाम कोर्ट वेझो औरत मुबिना तौर पंजी न्याणी समेत खूह में टपो डेई अपघात कयो। मसमात आशिका ए संदस अठ वरन की धीअ फायदा जो लाश खूह में मिलियो। चेलाल भरसा गोठ हरू के वांड में पंद्रह डी अगे शादी कंदड़ नारी मुबिना तौर अपघात कयो। पिथुरो में भी शादीशुदा नारी ए नौजवान पढ़णो न थियण तां मुबिना तौर गडजी अपघात कयो। पुलिस मूजिब पढ़ियल नारी जिया कोहली ए नौजवान भूरो कोहली गडजी वण में फाओ खाई अपघात कयो आहे। दादू के गोठ सूमर कंबराणी में भी नौजवान मुबिना तौर अपघात करे छड्यो। पीटीसीएल मुलाजिम पंजवीह वरन के कयूम कंबराणी फाओ खाई जिंदगी जो अंत आंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीत, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03062447।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या
5: अलबीब रिश्ता
2: सिंध के हो GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दे।
4: जाओ जी सब तैयार, ये घर आना है शाहकार।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाए। I realized I was made for music.
4: जब तक मैं जिंदा हूँ तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आदि थंब आहे। तरक़ीअ जो रस्तो पाकिस्तान ऐं चीन जो गॾियल ख़्वाबु आहे। ॿिन्ही मुल्कनि हमेशा हिक ॿिए जी बुनियादी मफ़ादनि जो दिफ़ा कयो। वज़ीर आज़म जो चवण हो त ख़िते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में चीन बि पाकिस्तान जी ट्रियाकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत कई। गॾियल कोशिशुनि सां तरक़ीअ जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठल रहियो। वक़्त गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुड़ी वई। सी पैक पाकिस्तान जी मैशियत ऐं रोज़गार जी फरहमीअ लाइ अहम आहे। मुल्क में जटादार अमुन जी क़याम लाइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी। वतन जो अमुन मां शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे क़ुर्बाननि जो नतीजो आहे। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानीअ लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो GHQ में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे एज़ाज़ में कोठायल तकरीब खे ख़िताब। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि खे गाज़ियुनि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख़ुर आहिनि। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानीअ लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल पारां क़ानून लागू कंदड़ इदारनि जी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेढ़ में लगातार कार्रवाइयुनि ते वाखाण। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तेहरान में ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राक़चीअ सां अहम मुलाक़ात। खिते जी मौजूदा सूरतहाल समेत ट्रियाकड़ी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिब मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास राक़चीअ विच में जंग जी ख़ात्मे बाबति तजवीज़ुनि ते बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। मोहसिन नक़वीअ जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही ॿियो अहम दौरो आहे। ईरान खे मुआदो थियण ताईं को बि रिलीफ न ॾिनो वेंदो। तेहरान जे जवाब जो कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी माक़ूल आहिनि। तेहरान डील लाइ बेताब आहे। मुआदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं था। ईरान जंग जी ख़ात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण ते तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ारत जी तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीकी तजवीज़नि जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघजे। जंग जी ख़ात्मे लाइ हिक ॿिए जो एतराम तमामु ज़रूरी आहे। पाकिस्तान पारां इसराइली जारियत जो शिकार बणियल गज़ा वासियुनि लाइ खाद खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जी बदसलूकी वारे वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। तर्जुमान चयो आहे त ग्लोबल समूद फिलोटेला खे रोकणु ऐं कारकुननि सां बदसलूकी आलमी कानूननि ख़िलाफ़ आहे। काफ़िले में शामिल पाकिस्तानी शहरी सादीदी समेत समूरनि इंसानी हक़नि जे कारकुननि खे आज़ाद करण जो मुतालबो। स्पेन ऐं इटली पारां बि इसराइली क़दमनि जी मज़म्मत। स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो आहे त फिलोटेला जे कारकुननि जी तस्हीक क़बूलण जोगी नाहे। पंहिंजनि शहरनि सां बदसलूकी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। इटली में इसराइली सफ़ीर जी तलबी वाके ते वज़ाहत तलब। सिंध काबीना कराची जे BRT मनसूबे लाट 2 जो कम तेज़ करण जी मंज़ूरी ॾे छॾी। कम में देर ते अॻूणो ठीको रद्द। FWO खे कम ॾियण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर जी यूनिवर्सिटी रोड जो कम 90 ॾींहनि अंदरि मुकमल करण जी हिदायत। जेल में क़ैदियुनि जे खाधे पीते लाइ वाधू ग्रांट बि मंज़ूर। कणिक जे ॿिए सूबे ॾांहुं मुंतकिली ते पाबंदी लागू। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त सूबे में कणिक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। 28 आइनी तरमीम ते वफ़ाक़ असां सां को बि राब्तो नाहे कयो। तरमीम जा नुक़्ता शेयर थींदा त पार्टीअ जी मर्कज़ी कमेटी फ़ैसिलो कंदी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ख़िलाफ़ दाख़िल शिकायतूं रद्द करे छॾियूं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस ख़िलाफ़ दाख़िल 5 शिकायतुनि जो जाइज़ो वरितो। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ख़िलाफ़ शिकायतूं इतफ़ाक़ के राय सां रद्द कयूं वयूं। पेरेंट्स रहीम आगा खान जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां अहम मुलाक़ात। वज़ीर आज़म सिहत ऐं आला तालीमी शोबनि में ख़ासि ख़िदमतुनि ते पेरेंट्स रहीम आगा खान जी वाखाण कई। शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ AKDN एतमाद जोगो भाईवार आहे। पाकिस्तान सदाई पेरेंट्स रहीम आगा जो घर रहियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी पड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सेंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डूंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी
1: मेरी जिंदगी है तू, देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लोड शेडिंग न करण की हिदायत करे छी। कुछ वाफेदारन की रस्तुन से सजे इलाके की बिजली बंद करण गैर कानूनी करार। अदालत चयो तो बिल भरीदड़ शहरन के बिजली का महरूम करण बुनियादी इंसानी हकन की भंजकड़ी आए। जितां ट्रांसफार्मर लाथा विया आहिनि उते फौरी तौर बिजली बहाल की वञे। आवाम खां ट्रांसफार्मर जी मरम्मत जा पैसा उगाड़ण ऐं कूड़ा डिडक्शन बिल मोकिलण जो भी सख्त नोटिस। सीईओ सेपको खां मुबैना गैर कानूनी कार्रवाई ते रिपोर्ट भी तलब। पाक चीन सफारती लागापन के 75 साल मुकम्मल थियण ते इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के खिताब कंदे चयो आहे त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परडेही पॉलिसी जो बुनियादी थंब आहे। तरक्की जो रस्तो पाकिस्तान ऐं चीन जो गडियल ख्वाब आहे। बिन्ही मुल्कनि हमेशा हिक ॿिए जी बुनियादी मफ़ादनि जो दिफ़ा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त ख़िते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में पाकिस्तान मर्कज़ी किरदार अदा करे रहियो आहे। चीन बि पाकिस्तान जी टियाकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत कई। गडियल कोशिशुनि सां तरक़ीअ जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठल रहियो। वक़्त गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती मज़बूत थींदी वई। सी पैक पाकिस्तान जी मैशियत ऐं रोज़गार जी फराहमीअ लाइ अहम आहे। मुल्क में जटादार अमन की क्याम लाए दहशतगर्दी खिलाफ जंग कौमी अज़म से जारी रही। वतन जो अमन मां शहीदन ए गाजिन के कुर्बानी जो नतीजो है। शहीदन की इज्जत ए कुर्बानी हर पाकिस्तानी लाए मुकदस अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो GHQ में शहीदन ए गाजिन के एजाज देने वाली तकरीब का खिताब। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल शहीदन के वारसन ए गाजिन के फौजी एजाजन से नवाज। फील्ड मार्शल चयो तो शहीद ए गाजी कौम जो फख्र आन। शहीदन की इज्जत ए कुर्बानी हर पाकिस्तानी लाए मुकदस अमानत है। फील्ड मार्शल पारा कानून लागू कंदड़ इदारन की दहशतगर्दी खिलाफ वेड़ में लगातार कार्रवाई ते वखाण।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट
0: आप सुन रहे थे।
2: बाकी तमाम पखन के मुकाबले में
0: जबरदस्त KTN न्यूज।

0: किया है सिंधी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।

0: ही आहे सिंधजी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: आप सुन अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: इज़्ज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानीअ लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो जीएचक्यू में शहीदनि ऐं गाज़नि खे एज़ाज़ ॾियण वारी तक़रीब खे ख़िताब। आईएसपीआर मूजिब फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि खे गाज़नि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल चयो त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख़्रु आहिनि। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानीअ लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल पारां क़ानून लागू कंदड़ इदारनि जी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में लगातार कार्रवाइयुनि ते वाखाण बि कई। पाक चीन सफारती लागापन के 75 साल मुकम्मल थियण ते इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के खिताब कंदे चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परडेही पॉलिसीअ जो बुनियादी थंभ आहे। तरक्कीअ जो रस्तो पाकिस्तान ऐं चीन जो गडि॒यल ख़्वाब आहे। ॿिन्ही मुल्कनि हमेशा हिक ॿिए जी बुनियादी मफ़ादनि जो दिफ़ा कयो। वज़ीर आज़म चयो त ख़िते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में पाकिस्तान मर्कज़ी किरदार अदा करे रहियो आहे। चीन बि पाकिस्तान जे ट्रैकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत कई। गडि॒यल कोशिशुनि सां तरक्कीअ जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर रुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठल रहियो। वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती मज़बूत थींदी वई। सीपेक पाकिस्तान जी मैशियत ऐं रोज़गार जी फरहमी लाइ अहम आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तेहरान में ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राक़्सी सां मुलाक़ात। खिते जी मौजूदा सूरतहाल समेत ट्रैकड़ी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिब मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास राक़्सी विच में जंग जे ख़ात्मे बाबति तजवीज़ुनि ते बि ॻाल्हियूं थियूं। मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही बियो दौरो आहे। ईरान खे मुआदो थियण ताईं को बि रिलीफ न ॾिनो वेंदो। तेहरान जे जवाब जो कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी माक़ूल आहिनि। तेहरान डील लाइ बेताब आहे। मुआदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं था। ईरान जंग जी ख़ात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण ते तस्दीक

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खाए दे।
1: पल दो पल देखिए हर पीर से जुमा रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

शरपसंद देखिए 8 अक्टूबर से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अब आहे बिनी मुल्कन हमेशा एक बे जी बुनियादी मफादन जो दिफा कयो। वजीर आजम जो चवण हो त खिते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में पाकिस्तान मर्कज़ी किरदार अदा करे रहियो आहे। चीन बि पाकिस्तान जी ट्रैकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत कई। गडि॒यल कोशिशुनि सां तरक़ीअ जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर डुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठल रहियो। वक़्त गुज़रण सां गॾो गॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती वधीक मज़बूत थी। CPEC पाकिस्तान जी मैशियत ऐं रोज़गार जी फरहमी लाइ अहम आहे। मुल्क में जटादार अमन जी क़याम लाइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी। वतन जो अमन अमान शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी क़ुर्बानीनि जो नतीजो आहे। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानीअ लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो GHQ में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे एज़ाज़ ॾियण वारे तक़रीब खे ख़िताब। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि खे गाज़ियुनि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल चयो त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख़ुरु आहिनि। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानीअ लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल पारां कानून लागू कंदड़ इदारनि जी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेढ़ में लगातार कार्रवाइयुनि ते बि वाखाण। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तेहरान में ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची सां मुलाक़ात। खिते जी मौजूदा सूरतहाल समेत ट्रैकड़ी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिबि मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास राग़ची विच में जंग जे ख़ात्मे बाबति तजवीज़नि ते बि ॻाल्हियूं कयूं वयूं। मोहसिन नक़वीअ जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही बि॒यो दौरो आहे। ईरान जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीकी तजवीज़ुनि जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघिजे। जंग जे ख़ात्मे लाइ हिक ॿिए जो एहतराम तमामु ज़रूरी आहे। ईरानी ख़बरू इदारे मूजिबि ईरान अमरीका जे पैगाम जो जवाब ॾियण लाइ कम शुरू करे छॾियो। ॻाल्हियुनि में अमरीकी धमकियुनि खे सभ खां वॾी रुकावट करार ॾिनो वियो। ईरान खे मुआदो थियण ताईं को बि रिलीफ न ॾिनो वेंदो। तेहरान जे जवाब जो कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी माक़ूल आहिनि। तेहरान डील लाइ बेताब आहे। मुआदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं था। ग्लोबल समून फिलोटेला जा समूरा गिरफ़्तार मेंबर इसराइली क़ैद मां आज़ाद थी विया। इसराइल खां तुर्कीअ मुंतकिल। पाकिस्तान गज़ा वासियुनि लाइ खाध खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जी बदसलूकी वारे वाक़े जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त ग्लोबल समून फिलोटेला खे रोकण ऐं कारकुननि सां बदसलूकी आलमी कानूननि ख़िलाफ़ आहे। स्पेन ऐं इटली पारां बि इसराइली क़दमनि जी

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी करो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
4: जाओ जी सब तैयार, ये घर आना है शाहकार।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। I realized I was made for music.
4: जब तक मैं जिंदा हूँ तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी दाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

صرف غلام کیے بادشاہ

अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

अचण ताईं को बि न ॾिनो वेंदो। तहरान जे जवाब जो कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी माक़ूल आहिनि। तहरान डील लाइ बेताब आहे। वाइदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं।

ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। 28 आईनी तरमीम ते वफ़ाक़ असां सां को बि राब्तो नाहे कयो। तरमीम जा नुक़्ता शेयर थींदा त पार्टी जी मर्कज़ी कमेटी फ़ैसिलो कंदी।